0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांद

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million reals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 बज रहे हैं, यानी कि 4 घंटे बैठेंगे, एक साथ करेंगे, दिल खोल के बात गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उड़ान भरने वाले हैं। उसके साथ साथ वीकेंड आ रहा है, तो उसका एंजॉयमेंट, उसका एक्साइटमेंट जो है अलग लेवल पर है। तो धीरे धीरे धीरे अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या क्या चल रहा है वीकेंड के लिए, क्या क्या प्लान कर रखा है। और उसके साथ साथ अपने गुड मॉर्निंग कोड्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी सेंड कर दीजिए। और यहाँ पे हम गानों का सिलसिला भी जरा शुरू कर देते हैं।

क्या कहना है ये तो गाना सुन के ही पता चलेगा। और एक और गाना हम प्ले करेंगे शो की शुरुआत के लिए। शायद अरिजीत यही कहना चाहते थे जो भी मोहित चौहान बोल दिए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं वापस आऊंगा, मूवी का गाना सुनते हैं और शो को किक स्टार्ट करते हैं। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: वो पाट दे तूड़ा।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, this is Air Rahman.
3: Air Rahman.
2: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one. Radio
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:19 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। सतीश जी का मुझे पास मैसेज आया है, उन्होंने एक फोटो भेजा है और सतीश जी जो हैं एक अविड फिटनेस इंथुजियास्ट हैं, उन्होंने अपने आज के मॉर्निंग रन का जो है एक वो भेजा है मुझे, ट्रैक का वो भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह मोटिवेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा है, एज अ सैटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ बिकॉज आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाई अदर्स बट आवर सैटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाई आवर ओन माइंड सोल एंड हार्ट। बिल्कुल सही बात कही है, ये सैटिस्फिकेशन और सक्सेसफुल होने में बहुत ही बड़ा अंतर है, बट समझ में नहीं आता लोगों को। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है और उन्होंने जो है एक मैसेज भेजा है, फोटो भेजा जिसमें लिखा है, टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट रिच ब्यूटिफुल और परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू केयर। बिल्कुल सही बात कही है और गुड मॉर्निंग भेजा है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी प्यार और बिंदास दिन हम विश करते हैं। उसके साथ साथ जो है मुझे अबरार भाई ने भी मैसेज भेजा है, लिखा है, आवर वैल्यूज आर द गाइडिंग स्टार्स बाय विच वी नेविगेट द लैंडस्केप ऑफ आवर लाइव्स, गुड मॉर्निंग करके। जी बिल्कुल सही बात कही है, शत प्रतिशत हम आपसे सहमत हैं। उसके साथ साथ नाजनी जी का मैसेज आया है और नाजनी जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग माई डियर, बी पॉजिटिव एंड यू विल नो हाउ अमेजिंग द वर्ल्ड इज। वाओ, आज तो भाई पूरा काइंडनेस मोटिवेशन सब पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले मैसेजेस आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी को काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूं और थोड़ी देर में जब गानों के उस पार में वापस आऊंगा तो यहां पे हम चेक करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने तेज हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: स्टेशन क्लॉक में भाई अभी 6:32 हो रहे हैं। न जाने क्यों एकदम से जैसे ही मैंने माइक ऑन किया मेरे मुंह में जो है मलयालम निकलने वाला था। सडनली आई कंट्रोल्ड, मैंने बोला कि नहीं ये मलयालम स्टेशन नहीं है हिंदी स्टेशन है करके। वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले मम्मी को एक ऑडियो नोट भेज रहा था, तो इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से इतनी जल्दी स्विच कर लेता है चीज़ों का, या फिर डिसीजन ले लेता है, या फिर उस पैटर्न में रह लेता है करके। अभी फिलहाल इस चीज़ को हटा के रखते हैं, इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मगर एक सवाल है मेरे पास ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में, तो तैयार हो जाइए भाई ये बताने के लिए कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने ज्यादा तेज हैं।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: ओके, ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज जो है फुटबॉल रिलेटेड एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है कि फुटबॉल में बहुत सारे लोगों को जो है फेम मिलता है, बहुत सारे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, फैन फेवरेट्स हो जाते हैं, जैसे कि मेसी है, रोनाल्डो है, नेमार है, विनीशियस जूनियर है, ठीक है। बट मोस्टली मैंने देखा है कि यार स्ट्राइकर्स जो होते हैं या फिर विंगर्स जो होते हैं, स्ट्राइकर्स जो होते हैं, जो फ्रंट फॉरवर्ड्स जो होते हैं, उनको हमेशा बहुत ज़्यादा एक वो मिलता है, वो एक अंडर रेटेड एक बंदा रहता है जो हमेशा गोल पोस्ट में वहाँ खड़ा होता है और गोल सेव करने की कोशिश करता है। उनको जो है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको फैंस उतना प्रेफर नहीं करते, मिलती है। बट जितना हम फॉरवर्ड्स को प्रेफर करते हैं, जितना स्टारडम फॉरवर्ड्स को मिलता है, उतना शायद कीपर्स को नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, रियलिटी है, मुझे लगता है हर एक स्पोर्ट में ये रहता है। बट मैं जानना चाहूँगा, मेरा सवाल ये आपसे है कि ऐसा कौन सा गोलकीपर है जिसके पास सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। गोलकीपर विद मोस्ट क्लीन शीट्स इन वर्ल्ड कप, ये है मेरा सवाल। बताइए मुझे आप 3311063 पर मैसेज करके, और आप मुझे ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी। मुझे बताइए सवाल का जवाब क्या है। फिलहाल यहाँ पे सोना महापात्रा की आवाज में खूबसूरत मूवी का गाना सुनते हैं, नैना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:48 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक सवाल पूछा था मैंने ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में कि भाई बताइए मुझे ऐसे कौन से गोलकीपर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स रखे हैं, और मेरे पास थोड़े जवाब आए हैं और मैं जवाब जरा एक एक करके पढ़ देता हूँ। मुझे जो है संदीप जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है देयर आर टू गोलकीपर्स इंग्लैंड्स पीटर शिल्टन एंड फ्रांस फैबियन बर्थेस। और उसके साथ साथ मुझे सिमिलरली दीपक जी ने मैसेज किया है, यही जवाब जो है उन्होंने मुझे भेजा है। और उसके साथ साथ मुझे यही जवाब भेजा है जुल्फिकर भाई ने। तो आप तीनों ने जो है बिल्कुल सही जवाब भेजा भाई, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है। इंग्लैंड के पीटर शिल्टन और फ्रांस के फैबियन बार्थेस जो हैं, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है होल्ड करते हैं मोस्ट क्लीन शीट्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। 10 क्लीन शीट्स ईच है दोनों के पास, और उसके साथ साथ दोनों ने एग्जैक्टली 17 टूर्नामेंट अपीयरेंसेस लिए थे। 17 टूर्नामेंट अपीयरेंसेस का मतलब 17 वर्ल्ड कप में नहीं, 17 मैचेस में इन्होंने जो है इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। पीटर शिल्टन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, 1982 का, 1986 का और 1990 का। इन तीनों वर्ल्ड कप में 17 मैचेस में 10 क्लीन शीट्स इन्होंने मेंटेन किया है। सिमिलरली फ्रांस के जो फैबियन बार्थेस हैं, उन्होंने भी 17 मैचेस में 10 क्लीन शीट्स मेंटेन किए हैं 1998 में, 2002 में और 2006 में। और उसके साथ साथ 1998 में तो सबसे खास बात ये भी है कि फ्रांस ने अपना वर्ल्ड कप भी जीता था, तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट भी था। और बाकियों की अगर हम बात करें तो थर्ड पोजीशन में 8 क्लीन शीट्स के साथ जो है लेजेंडरी कीपर्स हैं, जैसे कि जैन जोंग ब्लोद, उसके साथ साथ एमरसन लियाओ, सेप मायर, क्लॉडियो टफारेल और ह्यूगो लॉरिस करके बड़े बड़े दिग्गज गोलकीपर जो हैं इनका नाम है। इन सब के पास 8 क्लीन शीट्स हैं। तो देखिए क्लीन शीट मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पे क्लीन शीट के बारे में बात हो गई है तो एक छोटी सी कहानी और मैं सुना देता हूँ, जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था साउथ कोरिया और जापान में, उसमें जर्मनी की जो टीम निकली थी, कहते हैं कि जर्मन फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे खराब टीम थी। उस सबसे खराब टीम को एक बंदे ने अपने बलबूते पे जो है फाइनल तक पहुंचाया। उस बंदे का नाम था ओलिवर कान, वो जर्मनी के गोलकीपर थे। और पूरे टूर्नामेंट में ओलिवर कान ने 2 या 3 गोल्स ही जो है कंसीड किए थे, 3 गोल्स कंसीड किए थे, और जो 2 गोल थे वो फाइनल में आए थे। सोच के देखिए उनकी जो एक मास्टरी क्या थी अपने आर्ट में, फाइनल में जाके उन्होंने 2 गोल कंसीड किए, वो भी R9 द फिनोमिनन रोनाल्डो ने स्कोर किए थे। तो भाई उस टाइम पे तो अनस्टॉपेबल थे, कौन ही रोक सकता था उन्हें। मगर तब भी ओलिवर कान ने जो है काफ़ी बढ़िया एक फाइट पुटअप किया था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है गोल को डिफेंड करने की कोशिश की। दो जगह पे, एक जगह पे तो एक छोटा सा मिस्टेक भी हो गया था, मतलब रीबाउंड से जा रहा था तो कुछ नहीं कर पाते थे, उनके हाथ में था नहीं वो। बट एनीवे ये कहानी बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: रेडियो

0: India's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई वक्त हो रहा है 7:07। चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं, कैसा हो रहा है मौसम का हाल, क्या मौसमिंग कर रहा है नहीं कर रहा है देख लेते हैं। अभी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और हवा जो है 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। ना भाई, इतना दम तो नहीं है हवा में कि मुझे उड़ा के ले जाए। हल्के में ले रहे हो क्या? आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, और लोएस्ट जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। और देखते हैं अभी आपके हाल क्या है, बताइए मुझे मैसेज करके आपके मौसम कैसा है बाहर। हो सके तो अच्छे नजारों का एक फोटो मुझे भेज दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी। तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, और यही बोलते हुए एक गाना सुनते हैं अजीम अजहर की आवाज में। Stay tuned, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। Experience more with ओरिडू।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas. I'm in
3: number one, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड मूवी का गाना यो हनी सिंह की आवाज में। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और अभी स्टेशन क्लॉक में 7:16 हो रहे हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ फोटोज आए हैं। संधू जी ने मुझे एक फोटो भेजा है दुकान से। यार सच बताऊं, ये फोटो काफी ओपन एरिया है, खाली एरिया है, मगर इसे देख के मुझे गर्मी क्यों लग रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। काफी खाली सा ओपन सा एरिया। थैंक यू सो मच फोटो भेजने के लिए। और सामी भाई ने भी मुझे जो है फोटो भेजा है, और उन्होंने मैसेज भेजा है कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। और उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा एक फोटो भेजा, एक पेड़ का फोटो भेजा है मुझे, और ये एरिया कौन सा है मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, सामी भाई जरा मुझे बता दीजिएगा। बट या थैंक यू सो मच ये फोटोज मुझे भेजने के लिए। दीपक जी ने भी मुझे फोटो भेजा है, रोड का एक फोटो भेजा है उन्होंने। थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग जब अपने जिंदगी से ऐसे वक्त निकाल के जब मुझे फोटोज भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश कर देते हैं आप मेरा। इसी खुशी में हम काम करते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में जीरो मूवी से। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद
2: नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहां पे जो है हम बात करना चाहेंगे फिट है तो हिट है में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो तैयार हो जाइए।
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहेंगे, हैंड राइटिंग और मेमोरी रिटेंशन के बारे में जो ताल्लुक है उसके बारे में। तो देखिए, एक फैक्ट है कि हैंड राइटिंग से मेमोरी रिटेंशन जो है इंप्रूव हो सकती है, और रिसर्च ये दिखाती है कि जब हाथ से लिखते हैं तो ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देख या सुन नहीं रहा होता है बल्कि एक्टिवली प्रोसेस भी कर रहा होता है। हैंड राइटिंग के दौरान मोटर मूवमेंट्स, विजुअल प्रोसेसिंग और लैंग्वेज रिलेटेड ब्रेन एरियाज के साथ जो है एक्टिवेशन जो है हो जाता है उनमें, जिससे लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। टाइपिंग में अक्सर हम वर्ड्स को क्विकली कॉपी कर देते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग के वक्त ब्रेन को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उन्हें अपने वर्ड्स में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। ये डीपर प्रोसेसिंग मेमोरी फॉर्मेशन को जो है स्ट्रेंथन कर सकता है। स्टडीज ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड और रिकॉल कर सकते हैं कंपेयर टू दोस हु ओनली टाइप वर्बेटिम नोट्स। हैंड राइटिंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि बेटर इन्फॉर्मेशन रिटेंशन, इंप्रूव्ड फोकस ड्यूरिंग लर्निंग, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन कंपेयर टू डिजिटल डिवाइसेस एंड स्ट्रॉन्गर रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स या प्रेजेंटेशंस। तो लिख के पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल है। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हर इंसान का एक अलग तरीका होता है। जैसे कि मेरा छोटा भाई है, उसे अगर रीड करने के लिए कुछ देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, बट उसी की जगह अगर उसे एक वीडियो दिखा देते हैं तो और इजीली जो है चीजें रिटेन कर पाता है। तो सबका अपना तरीका अलग अलग होता है। लिख के पढ़ना जो है और क्या कहते हैं, आपके ब्रेन को हेल्प करता है, आपके ब्रेन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, मेमोरी रिटेंशन को इंप्रूव करता है। तो ये बात याद रखते हुए बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद.
3: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
5: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
3: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
6: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
7: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
6: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
7: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
6: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
8: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थ केयर.
9: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
8: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Nasim Healthcare.
10: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
11: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
12: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदे। तो भाई कतापोस्ट जो है कनेक्टेड को रीबूट करता है ताकि लोग बॉर्डरलेस तरीके से शॉप कर पाए। अब कतर में जो शॉपर्स हैं वो वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं, इवन उन लोगों से जो यहाँ पे शिपिंग करने से मना कर देते हैं थ्रू कनेक्टेड। जी हाँ, ये एक रिवैम्प्ड वर्जन है जिसको कतर पोस्टल सर्विसेज कंपनी ने फिर से लॉन्च किया है। ये एक इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस है जिससे कस्टमर्स को एक सीमलेस ग्लोबल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी वर्ल्ड वाइड लीडिंग रिटेलर्स से। इससे क्या होता है कि अभी टर्की में जो लोग हैं या फिर टर्की में कोई एक स्टोर है, यूएस में कोई स्टोर है, यूके में कोई स्टोर है, सऊदी में कोई स्टोर है या फिर यूएई में कोई स्टोर है, जो लोग यहाँ पे शिप नहीं करते हैं, कुछ रिटेल स्टोर्स शिपिंग नहीं करते हैं, उनके थ्रू भी हम सामान यहाँ अपने डोरस्टेप तक पहुँचा सकते हैं। और यही बात बताते हुए जरा हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: presents CB 2026 million rials dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 rials ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: एनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, main hu Divya Datta. And you're listening to Radio Olive Jio Bindas. I'm in on the
4: rock, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:18 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो चलिए भाई बात करते हैं मैचेस के बारे में। कल हुआ था स्विट्जरलैंड कनाडा के बीच में मैच ग्रुप बी का, जिसमें 2-1 से स्विट्जरलैंड ने जो है मैच जीत लिया, और बोस्निया और कतर के मैच में 3-1 से बोस्निया ने जो है मैच जीत लिया। एक गोल कतर ने स्कोर किया था और जो है कतर का जो वर्ल्ड कप कैंपेन है यहाँ पे एंड होता है। बट कोई नहीं, बॉयज प्लेड वेल, उन्होंने बहुत कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार बिल्कुल बढ़िया ताकत के साथ, जज्बे और जुनून के साथ हम वापस पहुँचेंगे। और आज सुबह मैच हुआ था मोरक्को और हैती के बीच में, जिसमें 4

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिन

0: Das Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
1: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. For more information, call 4411111.

0: देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल तो दिया दुल्हन हम ले जाएंगे, मगर दुल्हन से पूछ तो लो एक बार कि वो आना चाहती है कि नहीं। परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे नहीं आज तक? कंसेंट का मीनिंग नहीं पता है का? आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:31 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो चलो भाई आज के होने वाले बाकी दो मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। शाम को नेचुरली रात को मैच होने वाला है कुरासाओ और आइवरी कोस्ट के बीच में, उसके साथ साथ इक्वाडोर और जर्मनी के बीच में। जर्मनी भी काफी अच्छी तरीके से जो है क्रूज कर रही है, आगे बढ़ रही है, देखते हैं इक्वाडोर किसी भी तरीके से कोई बाधा बन सकता है कि नहीं। और कुरासाओ और आइवरी कोस्ट के बीच में ये बोलना चाहूँगी यार, कुरासाओ ने पिछले गेम में अपना मेटल जो है दिखा दिया, बहुत ही छोटी कंट्री होने के बावजूद भी, अपने पहले अपीयरेंस के बावजूद भी काफी दिलगुर्दा जो है वहां पर उन्होंने दिखाया, जज्बा जो है उन्होंने दिखाया और फुटबॉल फैंस का जो अप्रिसिएशन जो है उन्हें मिला। और रात के 2 भी 2 हैं, टूनिशिया वर्सेस नीदरलैंड्स है ग्रुप एफ में, उसके साथ साथ जापान वर्सेस स्वीडन मैच भी है। अब इन मैचेस में क्या मैचअप होता है, किस तरीके से टीम्स आगे आती है हम देखते हैं। टूनिशिया नीदरलैंड्स में तो क्लियर फेवरेट्स मुझे लगता है नीदरलैंड्स ही हैं, या फिर टूनिशिया के साइड से अगर कोई सरप्राइज आ गया तो वी नेवर नो राइट। जापान स्वीडन में टक्कर का मुकाबला हो सकता है, मगर जिस तरीके से जापान खेल रही है आई प्रेफर या फिर आई थिंक जापान जीतेगी, या फिर जापान के जीतने के चांसेस जो हैं थोड़े ज्यादा हैं। फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं हैप्पी न्यू ईयर का गाना। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस. कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM. ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स. सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड. कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
4: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार मैंने आज ऐसे इंस्टाग्राम में एक चीज स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से ना एक रील आया जहां पे एक फोटो था और उसमें लिख रखा था कि द टाइम व्हेन एप्पल यूज्ड टू ट्रीट इट्स कस्टमर्स नाइसली करके, ठीक है। और उसमें आईफोन का एक बॉक्स था जिसमें ईयरफोन लगे हुए थे, चार्जर था, चार्जिंग केबल था, अडैप्टर, सब कुछ था। और उसके बाद फिर एकदम से मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा, मुझे याद है जब मैंने खरीदा तो ये सब कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया था। एक टाइम था जब फ़ोन जो है सारे जितने भी फ़ोन कंपनीज थे उनका बॉक्स काफ़ी बल्की हुआ करता था, उसमें एक्सेसरीज हमें अच्छे खासे मिलते थे, और धीरे धीरे धीरे वो कम हो चुका है। तो आज टेक टॉक में या फिर टेक जोन में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज के, एक ऐसे एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज के जहाँ पे हमें ये प्रतीत होता है या फिर ये पता चलता है कि कस्टमर्स की आजकल कोई ना ज़्यादा वैल्यू नहीं रख रहा। अब मैं बताता हूँ क्यों। कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी हमारे आइकिया अल्फुतेम के एमडी से, वो बता रहे थे कि मुझे कि भाई कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कस्टमर एक्सपीरियंस में कंपनीज अपना टाइम और अपना एफर्ट इन्वेस्ट नहीं करेगी तब तक वो प्रोडक्ट कितना भी ऑसम हो, अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जीरो है या फिर कस्टमर को कुछ मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई अमाउंट ऑफ मार्केटिंग भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। आपको इनिशियल थ्रस्ट ज़रूर दे सकती है मगर जो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है या फिर लॉन्जिटिविटी बिल्ड करनी होती है वो नहीं मिल पाएगी। तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल के ज़माने में कस्टमर एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुका है। बहुत सारे कंपनीज जो हैं, हाँ भाई चल जाएगा, हम बिना चार्जर के दे तो भी लोग खरीद लेंगे, उस एक एटीट्यूड में आ चुके हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो है कि जो फीचर्स अगर हम एंड्रॉयड और iOS को कंपेयर करें तो एंड्रॉयड काफ़ी अच्छे फीचर्स देता है कम प्राइस पॉइंट में। iOS जो है बेसिक हमें फीचर्स देता है थोड़े और बड़े प्राइस पॉइंट में, मगर एक चीज मैंने नोटिस किया कि यार ये हैंग नहीं होता है, ये फोन ये हैंग नहीं होता। अच्छा, बहुत डिसेंट बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत मस्त तरीके से चलता है। एंड्रॉयड जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हैंग होना लग जाता है, शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। वैसे प्रॉब्लम्स iOS में लोगों को मिलते नहीं है। तो यूज़र एक्सपीरियंस जो है iOS का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड्रॉयड से जब हम कंपेयर करते हैं। मगर काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट में ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी आने लग गए हैं जिनका यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, मगर फिर भी कुछ लोग जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने यही बोला है कि भाई iOS यूज़ करने के बाद एंड्रॉयड में जाने का मन नहीं करता है। आपको क्या लगता है, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या iOS यूज़ करते हैं, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है। फिलहाल यही बात पूछते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गाना कॉकटेल 2 का।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मलबार gold and diamonds, golden summer के साथ आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

भाई छम्मो को ग्रांटेड लोगे तो छम्मो छोड़ गई जाएगी। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले लिंक्डइन में मैं बैठ के स्क्रॉल कर रहा था, देखिए आपको भाई जो है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ही नहीं देखता, लिंक्डइन में भी वक्त जाया करता है, वो भी प्रीमियम अकाउंट के साथ। थोड़ी कॉर्पोरेट मस्ती कौन पसंद नहीं करता। तो एक बात बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था लिंक्डइन में और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उस आर्टिकल में एक चीज़ लिखी हुई थी, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि द बेस्ट या फिर सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ जो आप अपने कंपनी को दे सकते हो, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू कैन गिव टू योर कंपनी इज योर साइलेंस। और उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो एक लेडी हैं, उन्होंने अपने काम से एक साल का सेबैटिकल लिया, शी टुक अ ब्रेक, एक डेढ़ साल का सेबैटिकल लिया। आफ्टर दैट शी जॉइन सम अदर प्लेस और 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पेपर डाल दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं होगा, तुम छोड़ दो करके, मैं छोड़ रही हूँ करके। तो सब बोलने लगे यार ऐसे कैसे होता है, यू नो यू हैव टू स्टिक अराउंड, थोड़ा तुम्हें देखना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोल दिया यार कि ये सेबैटिकल में आने का मेरा मेन डिसीजन था कि मैं अपने आपको ब्रेक दूँ और मैं अपना वर्थ रियलाइज कर पाऊँ और जो एक मेरा कैलिबर है उसके ऊपर और फोकस कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि भाई मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे वर्क प्लेसेस में ना डिसरेस्पेक्ट को, टॉक्सिसिटी को लोग थोड़ा सहने लग जाते हैं ताकि वो लोग बाकी लोग बोले कि भाई देखो कितने साल से लोग रहे हैं, या फिर लॉन्जिटिविटी जो है हमारे रिज्यूम में दिख जाएगा, लॉयल्टी दिख जाएगा। बट मैंने कई दफ़ा देखा है कि पीपल डोंट रियली केयर अबाउट इट, एंड इट्स ट्रू, इट्स क्वाइट वियर्ड बट इट्स ट्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए मगर ऐसा हो रहा है। संसार का सार है यार, क्या कर सकते हैं, यही है उसूल। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला था कि आपको अपनी बाउंड्री बनानी आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैंने ये सोचा कि यार देखो मोहतरमा बोल के तो निकल गई, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। और इसी बात से एकदम रिलेटेड एक बात जो है, थोड़ी देर पहले एक कलीग के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एकदम से इस टॉपिक पर आए। क्या है वो बात, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप ये गाना सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Short Break. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
2: जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आओ प्यार करें मूवी का गाना हमने सुना कुमार सानू की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट हैं, एक एक्सपर्ट हैं। ये अपने फील्ड में बहुत ही तजुर्बा रखती हैं, बहुत ही सालों के एक्सपीरियंस के साथ जो है यहाँ पे वो पहुंच चुकी है हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम
1: थैंक यू सो मच सुदेव, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: वो बिल्कुल मुझे भी।
1: थैंक यू सो मच आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया।
0: जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आके मैडम?
1: ठंडा ठंडा।
0: वो स्टूडियो हमने ठंडा कर रखा है इसलिए, बाहर गर्मी बहुत है ना इसलिए।
1: अगर किसी ने मुझे नहीं बताया पहचाना है अभी तक तो मैं कशिश हूँ।
0: क्या बात कर रहे हो? मैं भाई मेरी आंखें चौंधी आ गई, पैरों तले जमीन फिसल गई, क्या हो रहा है? कशिश
1: सुदेव यार मेरे को अपना मोमेंट एंजॉय करने अच्छा, दिया करो ना। अगर मैं इस अपने डिल्यूजन में हूँ, अगर मैं डिलुलू हो रही हूँ कि यार ठीक है लोग डिलुलू,
0: अच्छा ठीक है,
1: अगर मैं हो रही हूँ कि ठीक है यार लोग ना, मैंने आवाज इतनी अच्छी चेंज करी कि लोग मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, या ये मैं मान रही हूँ कि लोग मुझे पहचानते हैं,
0: देखो तो क्या दिक्कत है? दोनों में विन विन ही है आपका,
1: है ना?
0: पहचान रहे तो भी बढ़िया है,
1: नहीं पहचान रहे
0: तो भी बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था अपने लिसनर्स को कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ही टाइम वेस्ट नहीं करता, लिंक्डइन में भी वही करता हूँ।
1: एग्जैक्टली
0: ठीक है, काफी ऐसे बड़े बड़े लोग के आर्टिकल्स ऐसे पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा जहाँ पे एक मोहतरमा बता रही थी कि यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपके वैल्यू नहीं करते और बहुत सारे वर्क प्लेसेस में ऐसा होता है। तो थोड़ी देर पहले मैं और निशा ऐसे बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अवर फ्रेंड्स वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो टीचर्स की जॉब के बारे में बात हो रही थी कि कितना स्ट्रेसफुल जॉब है। और वैसे बाय द वे आज से जो है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, आज के बाद से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो भी एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। बिल्कुल चिल करना चाहिए और बहुत डिजर्व भी करते हैं वो लोग चिल करना। और स्पेशली मुझे, मैंने मतलब यहाँ का सीन मुझे उतना पता नहीं है, बट जितने भी जिनको मैं जानता हूँ जो प्राइवेट स्कूल्स में इंडिया में पढ़ाते हैं कहते हैं कि भाई काम ही काम रहता है और बच्चों को देखना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और जो टीचर्स ये जो नौकरी कर रही हैं बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं हमारे लिए, तो सलाम ठोकना चाहिए भाई इनके लिए। इन्हें ऐसे हल्के में नहीं लेना होता।
1: बिल्कुल।
0: फिर मेरा सवाल आता है, अब देखिए टीचिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन बिकॉज तुम एक नए जनरेशन को तैयार कर रहे हो, ठीक है। मेरा सवाल आता है जो कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं, जो डेस्क जॉब्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों।
1: राइट मतलब अगर मैं टीचिंग जॉब की बात करूं तो मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो टीचिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं एंड मैंने उन्हें देखा है कि मैं जिस स्कूल में थी उसी स्कूल में मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो मैं उन्हें स्कूल में तो देख ही रही हूँ एज अ टीचर। लेकिन एज अ टीचर टीचिंग हम जो है ये कहते हैं कि यार 8 घंटे के बाद हमारा जो कॉर्पोरेट

0: जॉब है वो खत्म हो जाना चाहिए हाँ। या 9 घंटे बाद हम काम घर लेके नहीं जाना चाहिए। एक मेल करने में जो है हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत काम कर रहे हैं हम घर जाके, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को देखा है वो 80 copies, 70 copies हाँ। घर लाकर चेक कर रही हैं, एक एक बच्चे को पर्सनल रिमार्क दे रही है, पेरेंट्स जो है वो रात को कॉल कर रहे हैं कि होमवर्क जो है वो आपने दिया था ये कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा है,
1: ये भाई होमवर्क नहीं कर रहा तो पेरेंट्स की गलती होनी चाहिए।
0: तो वो टीचिंग जॉब जो है वो सिर्फ स्कूल तक ही नहीं होती है, वो आप उन 80 बच्चों की जो आपकी क्लास में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। एंड मैं तो मम्मी को यही बोलती थी कि आपके बच्चे मैं नहीं हूँ, वो जो जो 80 पढ़ रहे हैं वो है, उनको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उनके बारे में ज्यादा पता है मम्मी को। सो कहीं भी अगर हम दोनों जॉब्स को कंपेयर करें, कॉर्पोरेट डेस्क जॉब को और एक टीचिंग जॉब को, कंपेयर तो हम नहीं कर सकते।
1: ये कंपैरिजन नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल अ कंपैरिजन, दिस इज जस्ट अ रियलाइजेशन कि जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं अच्छा काम नहीं करते। देखो काम मुश्किल होता है, काम कहीं भी आसान नहीं होता, काम के लिए एफर्ट लगता है, इसलिए वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट। मेरा सवाल ये है कि कई बार ना हवा बना दिया जाता है कि भाई बहुत वो है,
0: बहुत
1: आपको क्या कहते हैं डेडलाइन कंप्लीट करने पड़ेंगे, लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है,
0: राइट।
1: तो मैंने निशा से यही पूछा था कि यार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो है नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने आज मेल नहीं किया तो कल भाई कल, 3 लोग गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने एक बार एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी को, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, ठीक है। उनकी बातों को जब मैंने सुना तो इट चेंज माई पर्सपेक्टिव। उन्होंने बोला था कि यार कॉर्पोरेट्स में जब तुम काम करते हो तो ठीक है, तुम यू गेट ऑल दी जम्बूरी, तुम्हें ईसॉप्स मिलते हैं, अप्रेजल्स मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और इफ यू मेक अ मिस्टेक 1 क्वार्टर में या फिर 2 क्वार्टर में या फिर 3 क्वार्टर में, तुम उसे पकड़ सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक इट बैक, बट आवर मिस्टेक्स कम बैक इन बॉडी बैग्स, ठीक है। और जब मैंने ये सुना एंड आई वाज लाइक वाओ वाओ, ये कोई बताओ मैनेजरों को
0: एक फेक अर्जेंसी जो है वो क्रिएट की जाती है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में कि यार ये ना डेडलाइन है, हम मेल कर देंगे लेकिन उस पे उसके बाद 3 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है, बट हम पे एक प्रेशर है कि तुमको ये आज करके देना है वरना तुमको हम इनएफिशिएंट बोल देंगे कि तुमसे काम हो नहीं रहा है। एक फेक अर्जेंसी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर्स को भी समझने की बहुत जरूरत है, मैनेजमेंट को समझने की बहुत जरूरत है कि जो काम जिस डेडलाइन पे होना है उसी डेडलाइन पे बताओ, वरना मैनेजर्स की आदत रहती है कि स्पीड के हिसाब से ना वो मैनिपुलेट करते हैं डेडलाइंस को, ये ना थोड़ा स्लो काम करता है, इसको हम बोलते हैं कि 3 दिन बाद नहीं आज है डेडलाइन,
1: आज है डेडलाइन। तो इससे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट तो ये है नहीं, ये एक ग्रे एरिया है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है जहाँ पे हम ये एड्रेस कर सकते हैं कि इंसान को तुम जितना ज्यादा टाइम दो वो उतना उसके हिसाब से काम को खींचेगा। तो एक एक एक बैलेंस्ड तरीका एक अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं, एज एन इंडस्ट्री थिंग्स हैव टू चेंज। अब देखिए चेंज की बात तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि करने में मजा आता है होगा नहीं होगा ये
0: बात
1: तो खुदा
0: तो
1: जाने,
0: हम कर ही सकते हैं देखो
1: जी। फिलहाल यहाँ पे हम चेंज लाके तो कुछ नहीं, लेके तो नहीं आ सकते यहाँ पे उतना, क्या कहते हैं पावर अभी हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल एक ही चीज हम करवा सकते हैं, तो भाई डांस करिए जिंदगी नचारिए नाचिए, और यही बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
0: जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड These smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई मेरे पास एक मैसेज आया है, गौरव ने मैसेज किया है, बोला अच्छा टॉपिक है भाई। थोड़ी देर पहले हम लिंक्डइन पोस्ट से इंस्पायर्ड कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ मुझे प्रिंसन जी ने मैसेज किया है, बोला कि गुड मॉर्निंग सुदेव, बच्ची कहाँ है, काफी दिनों से सुना नहीं उसको, आई होप शी इज फाइन, शी इज फाइन। एंड कशिश जो है अभी मिड मॉर्निंग शो करती है, 10 बजे से शो करती है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेझिझक आप 10 बजे से 1 बजे तक कशिश को सुन सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं जरा याद दिला दूं कि भाई आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को, आप जाइए इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए radioolive.qa, उसके साथ साथ हमारे कंटेंट चेकआउट कीजिए, पोस्ट चेकआउट कीजिए, और अपने फीडबैक्स जो है सो आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह और निहिरा जोशी की आवाज़ में किल दिल का गाना।

0: मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
5: मैं हूँ अनिल कपूर, रेडियो

आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम बिंदास मॉर्निंग्स में, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 9:50 हो रहे हैं, यानी कि धीरे से निकलने का वक्त आ चुका है। 10 बजते ही यहां पे जो है कशिश आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। तो खुली बाहों से कशिश का स्वागत कीजिए, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिए। और उसके साथ साथ जाते जाते हम आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोग का ख्याल रखना और हमें ज़रा दुआओं में याद रखना। देखिए वीकेंड है तो एन्जॉय करना, खूब एन्जॉय करना, रेस्ट लेना, सेल्फ केयर के लिए कुछ करना और प्रायोरिटाइज करना कि मुझे क्या क्या चाहिए, अपने लिए क्या क्या चाहिए। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाना मत भूलना, ठीक है, प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को और अपने आप को भी उस प्रायोरिटी लिस्ट में एक अच्छी प्रायोरिटी देना। और यही बात बताते हुए हम भी जरा निकलते हैं, मिलेंगे आपसे हम संडे सुबह 6:00, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से फन कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: This hour is brought to you by
3: Homes R Us. We complete your home.

संगीत मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिफ पर. वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं. एंड आज वीकेंड ऑफिशियली जो है एंटर करने वाला है हमारे जीवन में. सो बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें जो है मैं आपको बताने के लिए लेकर आ गई हूँ. उन सब पर बात करेंगे, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे आज क्या स्पेशल डे उसकी बात हो, चाहे हमारी आज की वीकेंड स्पेशल मूवी रिकमेंडेशन की बात हो, सब कुछ आपको पता चलने वाला है आज के इस शो पर. सो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको मेरे साथ बनी रहना है और मुझे मैसेज करना है 3311063 पर कि आज का क्या प्लान है आपका, क्या वाइब है आपकी, कैसा लग रहा है और वीकेंड जो है किस तरीके से मनाने वाले हो. अगर कुछ स्पेशल करने वाले हो तो मुझे भी रिकमेंड कर देना यार, मैं भी वही कर लूँगी. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना सनी वेट्स गिन्नी टू से, गिन्नी वेट्स सनी टू से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. छाप तिलक गाने का नाम है, सोशल मीडिया पर वायरल गाना है. इस गाने को इन्जॉय कीजिए और बस आपकी कशिश के साथ बने रहिए, कहते रहिए जियो पिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:11.
3: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: सजेत और परंपरा की आवाज में मेरे सोनिया गाना आपने कबीर सिंह मूवी से एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मसला लेकर आ गई हूँ। एंड मौसम की बात अगर की जाए आज तो 41 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का करंट टेम्परेचर हो रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। पिछले दो दिनों में टेम्परेचर जो है वो आज थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है आज कम होने की उम्मीद की जा सकती है, यानी वीकेंड पर आपको ह्यूमिडिटी से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में थोड़ी सी कूलनेस ऐड करने की ज़रूरत है। बस इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। इस गाने को इंजॉय कीजिए और स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

वैसे देखिए ह्यूमिडिटी की वजह से भी हम भी यही कह रहे हैं कि हर जगह सब कुछ गीला गीला ही लग रहा है, कुछ नहीं कर सकते। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज जो है बहुत ही स्पेशल लोगों का बर्थडे है, करिश्मा कपूर जी का जो है आज हैप्पी वाला बर्थडे है। एंड उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ जो है उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है एंड कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो आपको याद है। लेकिन उससे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि करिश्मा कपूर की आपकी फेवरेट वाली मूवी जो है वो कौन सी है। 3311063 इज अ नंबर, इस पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए एंड करिश्मा कपूर का आपका फेवरेट गाना कौन सा है एंड कौन सी फेवरेट मूवी है, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है जो करिश्मा कपूर ने निभाया है अपनी लाइफ में और आपको बहुत पसंद है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। खैर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, यूसुफ खान जी ने जो है गुड मॉर्निंग किया है, सलाम किया है एंड मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यूसुफ खान जी एंड सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा है, बस वीकेंड का इंतजार है। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत इंतज़ार होगा वीकेंड का, हम काफ़ी टाइम से बस वीकेंड का ही तो वेट करते रहते हैं। सो बस आज हमारा वो इंतज़ार ख़त्म होगा, कल फिर से रेस्ट की उम्मीद में काम करेंगे हम। सो फिलहाल अमेजिंग गाना उंगली मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है पाकीज़ा। इस गाने को एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो विंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: में यारियां टू मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया. यारियां टू अगर आपने नहीं देखी है तो अच्छा हुआ नहीं देखी है. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूं. एंड यारियां टू एक ऐसी मूवी है जिसे देखने या ना देखने से आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा. वैसे तो ये एक मलयालम मूवी जो थी बैंगलोर डेज, उसका एक इंस्पायर्ड वर्जन बनाने की कोशिश की गई थी एंड काफ़ी कुछ सिमिलर था, बल्कि कॉपी थी मैं कहूँगी, लेकिन मेकर्स जो है इसे इंस्पायर्ड कहते हैं. इस मूवी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे बेस्ट थी और वो था ये गाना जो अभी आपने इन्जॉय किया अरिजीत सिंह की आवाज़ में. अगर आप मूवी स्ट्रेस कम करने के लिए देखते हैं तो ये वो मूवी नहीं है जो आपको देखनी है. इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा कि बॉलीवुड तुम्हें क्या हो गया. वैसे अगर आपको स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस है, तो उससे बचने का हर रोज़ आपको एक तरीका मैं बताती हूँ और आज भी उस स्ट्रेस से बचने का एक तरीका मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ. सो देखिए, आपको करना जो है बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको बस अपने फ़ोन में या आपके डेस्कटॉप पर एक सिली मीम्स का फोल्डर बनाना है, जहाँ पर फ़नी से फ़नी मीम्स जो आपको लगते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं, फ़नी वीडियोज़ आप उसमें डाल सकते हैं. एंड जब भी आपका मूड ख़राब हो, जब भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, आप वो मीम्स जाकर देखें. अब क्या होता है कि अक्सर लोग जब उनका मूड ख़राब होता है तो कोई फ़नी वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो पर्सनलाइज आपके चॉइस के हिसाब से नहीं होती है. लेकिन अगर आप ये फोल्डर बनाएंगे जो आपके डेस्कटॉप पे है सिली फाइल्स नाम से, सो इससे क्या होगा कि आपको जो है आपके पसंद के मीम्स जो है हर बार दिख जाएंगे. एंड हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उसी सिचुएशन से रिलेटेड मीम्स आपने डाल रखे हैं. जैसे आपको पता है कि यार आपका जो काम है वो आपका सबसे ज़्यादा मूड ख़राब करता है, आपको स्ट्रेस जो है सिर्फ आपकी वर्क लाइफ की वजह से होता है. सो वर्क लाइफ रिलेटेड मीम्स जो है, मैनेजर से रिलेटेड मीम्स या आपकी कलीग से रिलेटेड मीम्स आपने उस सिली फोल्डर में डाल के रखे हैं. एंड जितनी बार आप उसे खोलेंगे देखेंगे तो उतनी बार जो है आपको अच्छा फील होगा. सो जितनी बार भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं आप वो मीम जो है उस फोल्डर में ड्रॉप कर सकते हैं कि जब मेरा मूड ख़राब होगा तो मैं ये देख लूँगा. ट्राई कीजिए एक बार 3311063 पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये जो स्ट्रेस कम करने के तरीके हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं और ये सेगमेंट क्या हमें चालू रखना चाहिए या फिर हमें बंद कर देना चाहिए. ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपकी रेडियो सच पर, इसे इंजॉय कीजिए. रूबरू गाने का नाम है. मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nana Tal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:10।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव

0: देखिए जी, बात तो बिल्कुल सही है. ऐसे लड़के सपने में ही मिलते हैं जो घर को डेकोरेट करना जानते हो. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसूसन शो, आपके लिए लाइफ मस्ता लेकर आ गई हूँ. एंड पता नहीं क्यों दुनिया भर की सबसे वियर्ड जो रिसर्च है वो मेरे ही इंस्टाग्राम फीड पर आती है, और फिर मैं ही, पता नहीं कैसा दिमाग है मेरा कि मैं ही उन रिसर्च के पीछे जो है पढ़ जाती हूँ कि आज तो सच पता करके देखेंगे कि ये रिसर्च सही है या नहीं है. सो एक रिसर्च जो इस वक्त मेरी फीड पे जो है काफ़ी आ रही है वो ये है कि 70% लड़के जो है वो किसी भी नए घर में शिफ्ट होने के बाद या किसी भी रूम को रेंट पे लेने के बाद एटलीस्ट 6 महीने तक नया बेड लेना नहीं चाहते हैं. यानी बेड फ्रेम जो है वो नहीं लेना चाहते हैं, ज़मीन पे चादर बिछा के, गद्दा बिछा के जो है प्रेफर करते हैं वो रहना. इसका मतलब यही है, रिसर्च करने के पीछे का मोटिव एजेंडा यही है कि लड़के जो है वो अपने घर को एक यूटिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि यार ठीक है घर होना चाहिए ताकि हम घर पे रह सके. लेकिन लड़कियां जो है वहीं पे घर को एक ऐसी स्पेस की तरह ट्रीट करती हैं जहां पर उन्हें बार बार जाने का मन करे, जहां पर वो रिलैक्स कर सके, जहां वो सेफ फील कर सके. एंड इसीलिए वो उस जगह को काफ़ी एस्थेटिक जो है वो बना के रखती है, सजा कर रखती है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए लाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, प्लांट्स लगाती है. वहीं लड़के जितनी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं सिर्फ उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं. आप बताइए आपको क्या लगता है 3311063 पर कि क्या लड़के सच में एक जगह पे कम इन्वेस्ट करते हैं, घर पे कम इन्वेस्ट करते हैं जिन चीज़ों में, मतलब जिन चीज़ों की ना बहुत ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें वांट है नीड नहीं. कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर 3311063 मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आर.

इंजॉय कीजिए और आपकी कसूस की शायद कहते रहिए जियो बिंदास 3311063 इज माई नंबर। कॉल कीजिए, बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल ये गाना इंजॉय कीजिए।

वीर सारा मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसूस, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड यार थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रही थी कि जितनी दुनिया की वियर्ड रिसर्च हो सकती है सब मेरी फीड पे आ जाती है। एंड मैं भी पता नहीं कैसी सी हूँ कि उसके पीछे का सच पता लगाने में की कोशिश में जो है लग जाती हूँ। सो आज मेरे पास ये रिसर्च आया है कि 70% लड़के किसी घर में शिफ्ट होने के बाद उसमें बिस्तर तक के लिए जो है मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो जब तक खींच सकते हैं बिना किसी फर्नीचर के वो उतना स्ट्रेच कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लड़के एस्थेटिकली घर को डेकोरेट करने में बिलीव नहीं करते हैं? यही मैंने आपसे पूछा था। एंड मुझे ज्योति जी का मैसेज आया है और ज्योति जी ने ये कहा है कि देखिए मैं ये जो है सिर्फ सिंगल लड़कों की बात नहीं है जो अकेले रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे जो है कभी फर्नीचर या कुछ घर सजाने का जो डेकोरेशन का आइटम होता है वो लेने नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फालतू का इन्वेस्टमेंट है जो है वो है, मतलब आप पैसे इससे में ज़्यादा खर्च करो, इससे बेटर है कि आप कहीं पर कुछ ऐसी वर्थ चीज़ दे लो। तो मैं बस ज्योति जी के हस्बैंड से कहना चाहती हूँ वर्थ चीज़ क्या होती है, क्या ले लेना वर्थ होता है? अगर हम एक प्ले स्टेशन ले लेंगे क्या ये वर्थ है? नहीं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि घर को डेकोरेट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब वो एक जगह है जहां पर आपको वापस जाने का मन करना चाहिए। एक डार्क रूम में जाने का मन तो देखो ऑफिस से किसी का नहीं करता है, फिर आपका ज्यादातर टाइम जो है वो बाहर बीतेगा, बाहर जाओगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। इससे बेटर है घर को एस्थेटिक बना के रखो, किसी कैफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है 3311063 पर अगर आप मुझे बता सकते है। थोड़ी सी देर में आज की वीकेंड स्पेशल मूवी रिकमेंडेशन आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आई हेट लव स्टोरीज का बहारा गाना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, इसे एंजॉय करो और आपकी गजल के साथ कहते रहो जियो बिंदास। स्टे ट्यून्ड है ना।

0: कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज में दिल से मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। और वैसे तो मैं आपको मूवी रिकमेंड करने वाली थी, लेकिन तभी इकबाल खान साहब का जो है मैसेज आ गया मेरे पास। एंड मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो खुल के अपना ओपिनियन एटलीस्ट किसी चीज़ पर देते हैं। मतलब देखो, लाइफ में ना ओपिनियन सबके पास होता है, लेकिन एक करेज होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए अपने उस ओपिनियन को सामने वाले को देने के लिए। और बस इसीलिए तो मैं आपसे ऐसे सवाल पूछती भी हूँ, क्योंकि कोई भी रिसर्च अगर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उस रिसर्च को असल में टेस्ट कैसे किया जा सकता है, असल में नॉर्मल लोगों से पूछकर। वरना साइंटिस्ट तो कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, एंड हो सकता है कि वो रिसर्च एक पर्टिकुलर एरिया पे ही वैलिड हो। सपोज कुछ रिसर्च जो है वो सिर्फ इंडिया में काम कर सकती है, कुछ रिसर्च सिर्फ कतर में काम कर सकती है। लेकिन आज हम बात कर रहे थे एक ऐसी रिसर्च पे जो काफ़ी फनी लगी थी मुझे, लेकिन एक नया प्रस्पेक्टिव जो है वो मुझे दिया है इकबाल साहब ने। सो आज का टॉपिक यही था कि 70% लड़के, I will quote myself again, 70% लड़के जो है वो जब किसी नए घर में या किसी रूम में शिफ्ट होते हैं, रेंट पे शिफ्ट होते हैं, सो वो कुछ महीनों तक फर्नीचर पे खर्चा नहीं करते हैं। एंड वो जितना जो है स्ट्रेच कर सकते हैं बिना खर्चा करे उतना ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ये रिसर्च थी। अब इसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़के जो है वो फर्नीचर पे खर्चा नहीं करते हैं, लड़कियां जो है वो घर को सजाने पे ज़्यादा बिलीव करती हैं। एक बार आपने एक बहुत ही अच्छा मुझे ओपिनियन दिया है, व्यू दिया है कि लड़कियां जो है वो शादी से पहले इतने एफर्ट्स नहीं करती है घर को डेकोरेट करने में, वो अपने फैशन पे उतने खर्चा कर सकती हैं, वो खुद की ग्रूमिंग पे करती हैं, वो बाकी चीज़ों पे खर्चा करती हैं, लेकिन डेकोर पे उतना खर्चा नहीं करती हैं। कंपैरेटिवली लड़के जब सिंगल होते हैं तो वो डेकोर पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, एंड यही पिक्चर बदल जाती है जब शादी हो जाती है। सो शादी के बाद लड़कियाँ जो है वो घर को सजाने पर ज़्यादा बिलीव करती हैं, बिकॉज वो ऐसा फील करती हैं कि इट्स अ पर्सनल स्पेस जहाँ पर वो जो चाहे उस जगह को कस्टमाइज़ कर सकती। लड़के वहां पर कई और चीजों पर ध्यान लगने देने लग जाते हैं, तो उसके बाद एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। बट इनका कहना यह था कि रिसर्च सिरे से खारिज कर रहा हूं मैं। बस देखिए एक बार जी, मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप रोज मुझे ऐसे मेरे क्वेश्चंस पर जो मैं रोज लेकर आती हूँ रिसर्च पे, अगर आप मुझे जवाब देने लग गए ना तो मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज मुझे ऐसे लोग तो चाहिए। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो इंटरनेट कह रहा है कि रिसर्च ऐसी है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आप सब भी अपने ओपिनियंस किसी भी टॉपिक पे, मेरी किसी भी कंटेंट पे मुझे दे सकते हैं 3311063 पर मैसेज कर सकते हैं, इकबाल जी की तरह ऑडियो नोट भी भेज सकते हैं। फिलहाल ऑल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का मौका आ गया है, इस गाने के उस पार थोड़े और गाने इन्जॉय कीजिए आप, उसके बाद फिर हम जो है आज की मूवी रिकमेंडेशन की बात करेंगे। फिलहाल ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर,
1: रेडियो ऑल।

0: सॉन्ग ऑफ द ईयर
1: ये गाना
2: अल्तमश फरीदी की आवाज में गाना है गिन्नी विद सनी टू मूवी से. सो इस गाने को एंजॉय करो और बस आपकी कसुस के साथ आपको कहते रहना जियो बिंदास और स्टे ट्यून्ड रहना है.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.

थोड़ी देर नहीं, अभी पूरा एक घंटा बचा है आपकी और मेरी बातचीत को। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि मूवी रिकमेंड करूँगी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब मैं फाइनली मूवी रिकमेंड करूँगी। एंड ये मूवी कोई ऐसी मूवी नहीं है जो आपको पता नहीं, मैं यूजुअली बहुत अनयूजुअल मूवी आकर आपको बताती हूँ, जो जिसका शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन आज एक ऐसी मूवी है जो बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ है। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आप बस थक गए हो, सो आप ये मूवी बस देख सकते हो एंड आपको इंस्टेंटली यू नो एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। एंड क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट एक्टर हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा स्पेशल है। मैं बात कर रही हूँ डियर जिंदगी मूवी की। आलिया भट्ट ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार आलिया नहीं, वहाँ पे हम हैं। एंड अगर मैं बात करूँ जहांगीर खान, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जहांगीर खान की, सो उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। शाहरुख खान के वन ऑफ द बेस्ट रोल्स की अगर मैं बात करूँ, सो वो हमें डियर जिंदगी में देखने को मिलता है। सो एक बार ज़रूर देखो अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो या आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, कहीं से प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार डियर जिंदगी ज़रूर से ट्राई करना। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आराम के रेडियो सेट्स पर इसे इंजॉय कीजिए। फिर ज़रा आकर जो है फैशन की बात करेंगे। इम्तियाज अली जी का मैसेज आ चुका है, मैं वो पढ़ती हूँ और आपको सुनाती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं थोड़ी सी देर में, लेकिन आके बात करेंगे हम फैशन की। मातृभूमि मूवी से चांद देख लेना गाना आपकी रेडियो सेट्स पर से इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानाताल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
3: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:12 यानी 12:12।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। नानाताल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: मूवी का नाम खानदानी शफा खाना। इस मूवी से ये ट्रैक जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर। एंड बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया यार कि आशीष फैशन की बात की या नहीं करी, मुझे नहीं पता था कि लोगों को फैशन में इतना इंटरेस्ट है। सो आज हम बात करने वाले हैं लेयर्ड नेक पीसेस की, यानी नेकलेसेस की। यू नो, पहले ऐसा हुआ करता था जहाँ पे बहुत लंबे लंबे नेकलेस चलते थे, लेकिन बीच में एक ट्रेंड आ गया था जहाँ पर सब लोग जो है चोकर पहनने लगे थे, यानी वो वाला नेकलेस पहनने लगे थे जो गले से एकदम चिपका हुआ होता है। इसलिए उसका नाम चोकर रखा गया है कि इंसान को सांस ही ना आए। लेकिन अब वापस लेयर्ड नेक पीसेस का जो है ट्रेंड आ चुका है, जहां पर लॉन्ग एंड बोल्ड अगर मैं बात करूं सो नेक पीसेस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जहां पर पर्ल यानी मोतियों से बने हुए जो नेकलेसेस हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें मेटल के जो चार्म्स होते हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। बोहो लुक के साथ जो है काफ़ी शीक लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ फॉर्मल्स पे, यानी अगर आप एक ब्लेजर पहन रहे हैं या आप ऐसा कुछ फॉर्मल शर्ट पहन रहे हो, उसके साथ भी ये जो बोल्ड लॉन्ग नेकलेसेस हैं इनको पेयर करने का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। पूरा इंस्टाग्राम मेरा तो देखो इन्हीं से भर गया है, यानी वो बड़े बड़े बैंगल्स, उसके बाद गले में बोल्ड नेक पीसेस। एंड अगर मैं ओवरऑल फैशन की बात करूँ तो इस वक्त काफ़ी फैशन जो है बोल्ड हो गया है। मतलब अभी कुछ साल पहले तक हम मिनिमलिस्ट फैशन की बात करते थे, जहाँ पर मिनिमलिस्ट ज्वेलरी यानी जितना डेडिकेट ज्वेलरी पीस हो सकता है उस पर बात किया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बोल्ड फैशन के आगे जो है हम जा रहे हैं। सो बस यही कहते हुए आगे बढ़ने का मन जो है वो मेरा हो रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: 2012-13 में मेरे पापा ने इस गाने को अपना अलार्म लगा रखा था। एंजॉय करो गाना, कहते रहो आपकी कसूस के साथ जियो। बिंदास।

थोड़ी तो देखो अजीब मूवी थी ये, मुझसे दोस्ती करोगी ये वाली मूवी है ऋतिक रोशन की, करीना कपूर की एंड रानी मुखर्जी की। थोड़ी सी अजीब लगती है मुझे ये मूवी, थोड़ी सी अजीब लगी है स्टोरी, लेकिन देखने में मजा आता है। ओवर रिएक्ट करते हैं सारे के सारे लोग। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड आज बहुत ही स्पेशल दिन है। हाँ, वीकेंड जो है वो शुरू हो रहा है, इसीलिए तो स्पेशल है ही, लेकिन उससे भी स्पेशल ये बात है कि आज ही के दिन यानी 25 जून 1983 को कुछ बहुत ही स्पेशल हुआ था। इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है हिस्ट्री बनाई थी अपना फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर। एंड इस पर यार ऑब्वियसली मूवी बनी हुई है। कैप्टन कपिल देव ने जो है इंडिया को बहुत ही अच्छी जीत, यार मतलब मैं ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ये वाली बात करते हुए। मैंने अभी रिसेंटली 83 मूवी देखी है एंड वो देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे जो पापा कहा करते थे ना कि उस वक्त होती थी क्रिकेट की असली फैंडम, वो मैं जो है जस्टिफाई कर पाती हूँ, क्योंकि अब जो है लोग क्रिकेटर्स के फ़ैन होते हैं। तब जो है इन इस क्रिकेट टीम ने जो है ये प्रूव किया था कि इंडिया की क्रिकेट टीम कुछ तो कर सकती है। एंड ये जो है सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, ये हर क्रिकेट फ़ैन के बारे में। मैं जब सुदेव से भी बात करती थी अपने मॉर्निंग शो में, तो हम यही बात करते थे कि यार देखो टीम कोई भी जीते, जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए। एंड इस मैच में जीत क्रिकेट की हुई थी। वो टीम जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, उस टीम ने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया था। तो बस ऐसे ही और अपॉर्चुनिटीज़ के नाम, ऐसी ही खुशी के नाम 83 मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक अमेजिंग वाला गाना मैं प्ले कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून रहिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: देखिए वैसे तो ये फरमाइशी शो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने फरमाइश की थी कि अमरिंदर गिल का कोई भी गाना जो है आप सुना देंगे तो बड़ा ही आपकी मेहरबानी हो जाएगी। तो कोई भी गाना हम क्यों सुनाएं, हम तो अच्छा वाला गाना सुनाएंगे। वैसे तो अमरिंदर गिल के सारे गाने अच्छे हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आप मेरे साथ अभी तक एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वीकेंड के लिए अपने एक्साइटमेंट को डबल भी तो करना है। लेकिन अगर आप दुखी हो रहे हैं कि कशिश क्यों जा रही हो, हम कैसे जिएंगे, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो देखिए ओवर रिएक्ट मत कीजिए, कल वापस आऊंगी अपना शो टेक टॉक लेकर शाम को 4 बजे अपनी जो है रेडियो सेट से एकदम चिपक के बैठ जाना, बिकॉज मैं आऊंगी और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। एंड अभी से आपको स्नीक पीक दे देती हूँ कि हम ना GTA के बारे में यानी नए वाले गेम के बारे में बात करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो आपको बस रहना है स्टे ट्यून ऑन रेडियो ऑलिव, अमेजिंग वाले गाने एंड अमेजिंग वाली बातचीत यहां पर जारी रहती है। हम सब आरजेस बस आप ही की एंटरटेनमेंट के लिए तो देखो काम कर रहे हैं। सो बस फ्रेश हो जाइए, वीकेंड को और फ्रेशली एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए, और ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे देखिए जाते जाते वही कहना चाहूंगी जो मैं अक्सर कहती हूँ कि खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे याद भी कर देना 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है। इस बार आकर जो है आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे, और नहीं दे पाए तो थोड़ी देर से दे देंगे लेकिन देंगे ज़रूर। एंड olive.qa हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी आकर आप हमारी अमेजिंग अमेजिंग फनी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं, एंड सभी आरजेज को जो है देख सकते हैं, और हमें सुनने के साथ साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरीके की। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए
1: रेडियो ऑलिव पर। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना,
0: और कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: This is Deepika Padukone.
3: Deepika Padukone.
2: Radio Olive 106.3.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC applies.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Gaji, आपके साथ Olive Recharge लेकर a very good afternoon, मेरी जान. क्या हाल चाल है and how has the day been so far? सब कुछ ठीक रहा ना? ऑफिस में किसी से कोई खटपट तो नहीं हुई? सब काम बढ़िया शांति सुकून से चल रहा है? घर पे सब ठीक है? आपकी सेहत कैसी है? सब कुछ जानना चाहती हूँ. फटाफट से आ जाओ 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे और बताइए. और साथ में बहुत ही कमाल के गाने तो देखो आ ही रहे हैं यहाँ पे. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक दूसरे का ख्याल रखना. और वही कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ. एंड वेन एवर आई एम सिक, मुझे थोड़ा बहुत भी अगर कोल्ड वगैरह हो जाता है आवाज़ में, वो ऐसे झलक रहा होता है, आप भी तो मैसेज करके पूछते हो ना, तनीषा ठीक नहीं हो क्या आज? गर्म पानी पी लो, कोल्ड हो रहा है तो अदरक वाली चाय पी लो. भाई इस चाय इस गर्मी में भी मैं नहीं छोड़ सकती. Yes, that much loyalty. देख रहे हो आप? आप भी ऐसे हो क्या? जरा बताओ मुझे 3311063 पर. Stay tuned and Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाएं फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: निशा
1: बहुत ही कमाल गाना रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर सुना आपने तनिषा के साथ हैं आप ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और देखो लोग तो ना बोलेंगे कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को लगता है कि हमें मुंह दिया गया हम उसका इस्तेमाल करें भरपूर हम जो मन में आए वो बोल दें पर उस हर चीज को अपने ऐसे दिमाग में जगह दे देना दिल में जगह दे देना इज नॉट सेंसिबल यार आपका दिल और आपका दिमाग जो है वो इतनी प्रेशियस जगह है इट्स लाइक अ 5-star होटल आप वहाँ हर किसी को जगह नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है ना लाइक वो आपकी मेंटल हेल्थ को पीसफुल और काम करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं आपके दिल को सुकून नहीं मिल रहा है उनकी बातों से तो वो जगह उनके लिए नहीं है बाहर निकाल के फेंक दो जी हाँ थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है लाइफ में अपना ख्याल रखने के लिए ऑब्वियसली किसी को हर्ट करने की बात नहीं है यहाँ पे बस अपना ख्याल रखने की बात है सो ज़रा कोशिश करो अगर कोई भी परेशान कर रहा है ना और बात समझाने पे भी नहीं समझ रहा है तो समझ जाओ कि ये सही जगह नहीं है उनके लिए ठीक है मेरी जान अर्जुन राव रेडियो ऑलिव जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3

0: is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
2: दोहा बैंक
1: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC अप्लाई.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और आई फील लाइक कुछ गानों को सुन के ना कि सुनना इज नॉट इनफ फॉर दीज सॉन्ग्स. आई वॉन्ट टू ईट दीज सॉन्ग्स. मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता है एंड देर इज अ लिस्ट ऑफ दोज सॉन्ग्स यू नो यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स जो आपको इतना एक्सट्रीम सुकून दे देते हैं. वैसे म्यूजिक तो हर टाइप का बहुत अमेजिंग होता है और हर इमोशन के साथ परफेक्टली फिट बैठ जाता है. सम हाउ वी गेट सम ऑफ द अदर सॉन्ग जो कि जिस भी सिचुएशन में हम

मैं राइट नाउ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. कहीं इंस्टाग्राम पे देख लेंगे हम, कभी रेडियो पे आप सुन रहे हैं वहां आ जाता है, कोई आपके आसपास से गुजरता हुआ गुनगुना देता है. तो या दिस हैपेंस, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. यूनिवर्स विल सेंड यू थिंग्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर. सो आप उस वक्त ढूंढ रहे होते हो कि यार कोई ऐसा गाना मिल जाए जो मेरी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पाए, तो मिल जाता है किसी भी रूप में. राइट नाउ क्या आपके दिमाग में चल रहा है, व्हाट्स द सिचुएशन इन लाइफ, शेयर कीजिए. उसके हिसाब से गाना अगर मैं चला पाई तो जरूर चलाऊंगी आपके लिए. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Nasim Healthcare.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive Recharge.
6: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
7: This hour is brought to you by.
8: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
9: दोहा बैंक,
8: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका रेडियो,
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ और रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. And everybody is talking about India's Got Latent Season 2, जो कि Netflix पे आया. And people are like कि Netflix क्यों इतना stupidity कर रहा है कि जो शो YouTube पे भी डल रहा है वो Netflix पे आ रहा है. So see, दोनों जगह एक ये point है कि आप किसी एक का subscription तो लोगे ही at the end of the day. तो किसी ना किसी का विन वहाँ पर हो रहा है. कुछ लोग, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एक्चुअली, नॉट कुछ, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है ही और काफ़ी लोगों के पास यूट्यूब का भी है. बट अनदर थिंग जो लोग पोक कर रहे हैं बार बार कि इस बार मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत फिल्टर डाल दिया. भाई, इंसान इतने बड़े झमेले में से निकल कर आया है, अगर वो थोड़ी सी सावधानी बरत रहा है तो इसी इसमें उसी की भलाई है ना. एंड वी वॉन्ट टू सी दैट आर्टिस्ट, राइट, हिज वर्क वी वॉन्ट टू सी. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. आई तो एंजॉयड इट, मैंने देखा. एंड आलिया भट्ट एंड शर्वरी वर सच अ स्पोर्ट इन दैट शो. बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर. इफ यू हैवंट, मौका है, दस्तूर भी है, चौका मार लो मेरी जान. और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, थ्री ओ बिंदास.
0: रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.

Listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive. Geo Binda.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रखिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
1: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: ऑलिव अपडेट्स, ऑलिव अपडेट्स। कारामा अवार्ड्स कतर रियाल 2.2 बिलियन डील्स। कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन हैज साइंड अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मोर देन कतर रियाल 2.2 बिलियन टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इन द वेस्टर्न रीजन एज इट मूव्स टू कनेक्ट द दुखान सोलर पावर प्रोजेक्ट टू द नेशनल ग्रिड। द डील्स वर अवार्डेड टू सेवरल क्वालिफाइड लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग वोल्टेज इंजीनियरिंग लिमिटेड, द बेस्ट एंड बीटास कंसोर्टियम, लार्सन एंड टूब्रो एंड एलएस केबल। The contracts fall within Karama's strategic initiatives to link the Dukhan solar plant to the network in the country's west. Qatar Post reboots connected for borderless shopping. Shoppers in Qatar can now buy from the world's biggest online stores, even those that refuse to ship here and have the parcels land at their doorstep. Thanks to a revamped version of Connected launched by Qatar Postal Services Company, the integrated international shipping service gives customers a seamless global shopping experience from leading retailers worldwide. Using dedicated international addresses and secure home delivery through a reliable logistics network.
1: Olive updates. Olive updates.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: Only laga aur ho ja recharge.
2: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: आज बहुत काम है,
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
1: चलती।
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके, दैट्स तनिषा।
3: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर, ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। एंड हम सब ने अपने अपने घर छोड़कर इस दूसरे देश में आए हैं अपनी नई दुनिया बनाने के लिए, अपना नया घर बनाने के लिए। एंड बट देर आर सम हैबिट्स विच आर इनग्रेन्ड इन अस, लाइक मी बीइंग अ मिडिल क्लास किड। सो टूथपेस्ट वाली जो आदत थी ना, कि जब तक उसका लास्ट ड्रॉप ऐसे स्क्वीज नहीं कर लिया गया है उसे फेंका नहीं जाएगा। I still do that. जी, मेरे पास पड़ा होता है, मुझे एक होर्डिंग का इशू है। सो बिकॉज ऐसा होता था कि कभी शैम्पू खत्म हो गया तो आई वुड जस्ट यू नो आस्क माई ब्रदर, भैया शैम्पू लेकर आ जाओ यार। यहाँ मैं किसी को बोल नहीं सकती लाने के लिए। सो आई हैव दिस इशू कि कोई भी चीज़ अगर आधी आधी से नीचे हो गई है तो मैं उसे लाकर पहले रख देती हूँ, सो दैट लेटर एट द एंड मोमेंट जब वो खत्म हो जाए तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँ। दो वी कैन ऑर्डर एंड हमारे घर तक पहुँच जाती है, बट उसमें भी वक्त लगता है, राइट? सो आई स्टिल कीप थिंग्स ऐसे स्टॉक करके, नॉट टू मच, बट लाइक टूथपेस्ट की मैं बात कर रही थी। सो टूथपेस्ट अगर ख़त्म भी होने वाला है तो मेरे पास रखा है नया, पर स्टिल मैं उसको पूरा एंड तक स्क्वीज करूंगी। एंड मुझे लग रहा है कि वो स्क्वीज करने पे नहीं निकल रहा तो आई विल कट इट। आई स्टिल डू दैट। और फिर मुझे लगता है तनिषा व्हाट आर यू डूइंग यार। बट या दीज आर द हैबिट्स विच आर इनग्रेन्ड इन अस, राइट? ऐसी कौन सी आदत आप में है आज तक, ये जानना चाहूंगी मैं। 3311106 पर मैसेज कीजिए और बताइए। और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

तनीषा के साथ हैं आप रेडियो ओलिवर 6.3 एफएम पर. ओलिवरी चार्ज चल रहा है यहाँ पर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सम हैबिट्स व्हिच आर इनग्रेन्ड इन अस. जैसे मैंने टूथपेस्ट वाला एक एग्जांपल दिया था वैसे ही मुझे यहाँ पे शिखर जी का मैसेज आया. वो कह रहे हैं कि मम्मी घर में वो जो कुकीज का डब्बा होता था उसको सुई धागा वाला जो बना देती थी वो मैं यहाँ पर भी करता हूँ. मेरी वाइफ करती है एक्चुअली एंड आई नो कि व्हेनेवर आई सी दैट कुकीज वाला डब्बा उसके अंदर से सुई धागा ही निकलेगा. कभी अगर कुकीज निकलेगी तो मैं ही शॉक हो जाता हूँ. एंड देन आइसक्रीम के जो डब्बे आते हैं कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें भी आइसक्रीम के अलावा सब कुछ मिलता है एंड दिस फील्स सो नॉस्टैल्जिक एंड सो वार्म एंड सो होमली यू नो. क्योंकि हम इतनी दूर हैं बट स्टिल वी आर डूइंग दोज लिटिल थिंग्स टू मेक इट फील लाइक होम है ना. I feel it that way. What do you say? बताएं मुझे. सुन रहे हैं रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है आपके मेरे हम सबके favourite. Lame jams. का और आज का जो सवाल है वो है कि what does a deer do in the jungle? Deer बोले तो हिरन क्या करता है जंगल में? इन अ वे मैं जवाब दे चुकी हूँ, जरा सोचो और बताओ मुझे 3311063 पर व्हाट डज अ डियर डू इन द जंगल. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन जुबिन दास मेरी जान.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूँ आदर्श शर्मा और आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply
4: kabhi use noor noor kehta hu kabhi main hoor hoor kehta hu

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Tanisha आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर. और लेम जेम्स का मैंने सवाल पूछा था कि व्हाट डज अ डियर डू इन द जंगल. देखो लॉजिकल जवाब नहीं चाहिए कि यू नो घूमता है एंड व्हाटएवर. नो, लेम जवाब चाहिए. और मेरा जो सवाल है उसी में जवाब भी है. गौर से सुने, बहुत कम यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर्स आए हैं सो फार. सो एक और मौका दे रही हूँ, बताएं मुझे व्हाट डज अ डियर हिरण डू इन द जंगल. थोड़ा सोचोगे और समझोगे मेरे सवाल को तो पता चलेगा कि सवाल में ही जवाब है मेरी जान जी. बताएं 3311063 पर मैसेज करके या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव ट्रियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर जियो।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ वाली रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और एक और मौका दिया और यहाँ लड़ी लग चुकी है जवाबों की. जी हाँ, and everybody got the correct answer. The question was, what does a deer do in the jungle? He run. Yes, that is the correct answer. And all the people who tried and gave me the correct answer, I'm proud of you, मेरी जान. Yes, I am proud of you. और दिल से ढेर सारा प्यार आपके लिए. वर्चुअल वाले हग्स भी ले लो मेरी तरफ से. और बढ़िया यार, इसी बात पे आप एक अमेजिंग गाना तो डिजर्व करते हैं. एक नहीं, आप तो बहुत डिजर्व करते हैं. दैट इज वाई पूरे दिन हम यहाँ पे बैक टू बैक अमेजिंग गाने आपके लिए चला रहे होते हैं. पर ये जो अगला आ रहा है ना, स्पेशली आपके लिए मेरी जान. इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड केक गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक,
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC applied.

0: तनिषा
1: खुश तो बहुत होगे तुम हैं। वीकेंड एकदम बढ़िया तरीके से आ चुका है, फुल सेट। वेदर थोड़ा सा यू नो अप एंड डाउन कर देता है मूड को, बट मैनेज हो जाएगा, ठीक है। वीकेंड है, इतना लंबा इंतजार किया है, बढ़िया तरीके से एंजॉय करना है इसको। फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर, जिसके साथ भी स्पेंड करना है करो, पर अपने लिए वक्त जरूर निकाल लेना। और इसकी रिपोर्ट मैं लूंगी सैटरडे को आपसे, मिलूंगी ना सैटरडे को, तो मुझे जानना है आपने अपने लिए कुछ किया कि नहीं किया। देखो, हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं लाइफ में, पर जहां बारी अपनी आती है ना तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वहां पे प्रोक्रास्टिनेशन हो जाती है, और ये गलत बात है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जन, उसके बाद सब आते हैं, तभी लाइफ सही रहेगी जी। और बढ़िया गाने यहाँ पे चल ही रहे हैं, बट देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, 3311106 पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और हमें फॉलो कर लीजिए रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया पर, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM। दिस इज तनिषा जी, बिंदास मेरी जान, रेडियो ऑलिव।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।

0: एनर्जी भरी है, दो मेरे में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी एनर्जी जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है यार इस गाने से। मैं क्या जी सुनियो कि दादा की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है थोड़े नाल, हैप्पी वीकेंड।
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: कम ऑन बेबी।

वीकेंड चालू हो चुका है आप लोगों का, मेरा तो अभी दिन जो है वो एक तरीके से शुरू हुआ है, लेकिन ये दिन बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ये दिन जो है जब एंड होगा मेरे लिए तो वीकेंड मेरा चालू हो जाएगा। आपका हो गया तो 4 घंटे अपने ही है। कैसा रहा आपका आज का दिन? आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस, सारी चीजों का इंतजार कर रही हूँ। अटेंशन पूरी मिलनी चाहिए क्योंकि आपको भी मिलने वाली है। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 जियो विद अस। आज की पार्टी अपनी तरफ से

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
6: अरमान मलिक
7: नंबर
5: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ओलिव नंबर 1।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

साथ वाइब करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। अरे गोभी जैसी शक्ल ना बनाया करो आप, हंस लिया करो।

0: सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो,
1: हाँ थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, कहर ला दिया, बवाल मचा दिया। बवाल काटो यार, आज तो वीकेंड है। सिमरन कौर है आपके साथ, और देखो बवाल काट किस तरह से तकते हैं। आपके पास ये भी प्लान है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सो आज का मैच जो है वो 11 बजे जो है दो मैच होने वाले, क्यूरासाओ और आइवरी कोस्ट के बीच में, एंड उसके साथ इक्वेडोर एंड जर्मनी के बीच में ये मैच होने वाला है। सो वीकेंड का आपका आज का ये भी प्लान रह सकता है, करो फिर मिलके।

0: का चेहरा देखूं, बस ऐसे ही चाहिए यार लाइफ में कोई कि बस आप ही के बारे में बात करे, मतलब इतना ऑब्सेस्ड हो वो आपसे, उतना भी ना हो जो ऑब्सेस्ड मूवी आ जाती है आजकल, वैसा नहीं होना चाहिए यार। 5:20 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ, हैप्पी वीकेंड माय लव।
1: ये खेल है, खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with... Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Pam Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner.
3: Ab suniye, Olive ka Zabardast Hit.

0: 106.3 FM, Gio Bindas. क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग.

0: स्टूडियो में यहाँ पे हल्ला कर रही हूँ और आप लोगों को कितने मजे आते हैं ये जब मैं जानती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है यार।
1: हाय सिमरन जी, हाउ आर यू? कैसे है? ठीक है, वीकेंड है आज, वीकेंड के लिए एक शायरी तो बनता है।
0: बिल्कुल बनता है यार। इरशाद,
1: मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं।
0: आए हाय हाय,
1: मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं। आपसे नजर हटे तो मैं ये जमाना देखूं। ये स्पेशल वीकेंड के लिए शायरी है और थैंक यू सो मच, लव यू 100 किलो। जियो बिंदास,
0: जियो बिंदास, लव यू 200 किलो। यार समझ रहे हो प्यार कितना सारा यार आप लोगों के दिल में मेरे लिए। और ये प्यार दिल में रख के कोई फायदा नहीं है, बताना भी जरूरी होता है।

0: लड़की आंख मारे, चलो फिर वीकेंड के टाइम में थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी देते हैं लेकिन स्टाइल से।
1: ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल।
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जियो बिंदास, देयर यू गो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: पूरा गाना बना दिया यार, ऐसा ही प्यार चाहिए मुझे भी। और ये वाला प्यार मुझे खुद से मिलता है, जरूरत ही नहीं है यार अब प्यार के लिए बाहर थोड़ी ढूंढने जाएंगे। जो है वो आप लोगों के लिए चला रही हूँ। एंड यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ?
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है आरजे सिमरन के साथ, व्हाट द वायरल ये बात है।
0: थोड़े दिन पहले हम इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहे थे, वो जो है वो ट्रिलियनियर जो है वो हो गए हैं, लेकिन अभी न्यूज ये आ रही है कि उनके स्पेसएक्स एंड टेस्ला के शेयर्स जो है वो ड्रॉप हो गए, अब वो ट्रिलियनियर जो है, मेरे मुंह से भी नहीं निकलता, सोचो मैं बनूंगी कि भी क्या, ठीक है ट्रिलियनियर जो है वो नहीं रहे, मुझे ये लग रहा है कि हम सबकी नजर लग गई है। सो यार जोक्स अपार्ट यार, बट दैट्स ओके, मुझे लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा अगर वो नहीं भी रहे हैं तो, चार दिन में फिर से बंदा वैसे ही हो जाएगा, या फिर उसके उसके पास भैया इतने पैसे हैं कि। थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल देख रही थी, लोगों ने उस आर्टिकल पे ये लिखा हुआ था कि ये जो अब इतने सारे पैसे हैं इलॉन मस्क के पास, इसमें वो क्या क्या खरीद सकता है। भाई लंबी चौड़ी लिस्ट थी, अलग लेवल का सीन था, बस नजरें लगा लिया होर की, या काला टिक्का नहीं लगाया हैगा तू। सुन रही है रेडियो ऑलिव पर के जरिए जीव अंदाज़, अनदर एकदम रॉकिंग वाला मैशअप।

0: ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मलबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

0: स्पेशल परफॉर्मेंस आया था यार। 6:06 दोस्त है कि इन स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है।
1: आपके
0: साथ स्लो स्लो यानी कि
2: चल थोड़ा।

वीकेंड वाला माहौल आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है। क्या होता है कि वीकेंड में सबके अलग अलग बाहर जाने के प्लान होते हैं। बाहर जाने के लिए लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा चीज बोली जाती है, अरे तुम रेडी होगी, तुम इतना टाइम लगा लोगी। हाँ तो लेते हैं हम टाइम रेडी होने में। सो एक रिसर्च जो है, मतलब दे आर सो ऑब्सेस्ड, ओके, कहते हैं कि लड़कियां जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में अगर हिसाब लगाया जाए 2.5 ईयर, इनकी ढाई साल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में रेडी होने के लिए लगा दिए। क्या बात है, तालियां बननी चाहिए हमारे लिए। लड़कों के पास ये सुपर पावर है कि लड़कियां जितना मर्जी टाइम लगा दे रेडी होने के लिए, लेकिन वो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। लाइक हाउ, नहाते नहीं हो क्या तुम लोग?

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: Hi everyone, I'm Arman Malik, 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

थोड़े नाल मौसम चेक करें। मौसम सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस एंड विंड जो है 22 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी जो है वो 19% है। सो ये है मौसम की अपडेट और म्यूजिक की अपडेट क्या कहती है। चलो लड़ा दिया बारिशा तो लगी है, बाहर तो बारिशा लग नहीं सकती है।

0: बिल्कुल यार, जब तक रहता है जन्नत दिखाता है, बस ठीक है यार। लाइफ में प्यार जो है वो ऐसा मेरे को लगता है कि सबकी जिंदगी में वो चीज जो है वो लक जो है उसमें काम नहीं करता है, लेकिन जब आपको जिंदगी में मतलब प्यार जो है वो ना मिले ना, तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी कि भाई कोई आ गया आपके दिमाग की बैंड बजाए, आपकी बैंड बजाए, इससे अच्छा अकेले रह लो यार। कभी अकेले भी जिंदगी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। स्पेस मिल जाती है, मजा रहता है, अपनी मर्जी से चीजें जो है वो लाइफ में होती है। सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जी ओ बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song. Yo, yo, yo.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Yeah.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सबके अपने अपने प्लान होते हैं, किसी को घर पे बैठना होता है, किसी को बाहर जाना होता है, किसी को मेरी तरह पिज्जा खाना होता है, लेकिन ऐसे पिज्जा कौन खाता है यार। से गाना जो है आपको सुना रही हूँ। हाँ, सो ऐसे पिज्जा कौन खाता है, मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी। एक बंदी 27 साल की लड़की, ओके, उसने अपने लिए जो है वो पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा जो डिलीवरी वाला लड़का था उसने उसको लॉक कर दिया अपने घर पे, फोर्स किया, कहती कि भाई तू मेरे साथ बैठ के मूवी देख। और भाई समहाउ उस बंदे ने जो पिज्जा डिलीवरी गाया था उसने पुलिस को कॉल कर दिया एंड बेचारे की जान बची। देखो यार, लाइफ में लोग इतने ज्यादा अकेले हो गए कि पिज्जा डिलीवरी वाले भैया कि मतलब जान पे बनाई यार, उसको लड़की ने लॉक कर दिया, कहती नहीं मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ बैठ के मूवी देख। ये क्या ही चल रहा है यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहिए जियो बिंदास। हैप्पी वीकेंड गाइस। आप लोगों के वीकेंड के क्या प्लान है? अगले घंटे का पहला गाना मैंने प्लान कर लिया है।
1: रुक जा बेबी, सांस तो ले ले।
0: ये वाली बेबी बोलते बोलते सांस नहीं लेती है, क्योंकि मतलब सांस भी क्यों डिस्टर्ब करे जब सिमरन कौर बात कर रही है। तो

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn? Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Socho, agar savings se aap ban jao millionaire, Commercial Bank ke Save and Win campaign mein bhag lijiye.
2: Har 10,000 Qatari Riyal saving growth pe milega ek coupon. Ya sirf 50% salary save karo and enter the draw.
1: New customer ho, to account kholo aur first salary transfer pe guaranteed chance to win.
2: Aur 9 mahine ki consistent salary transfer ke saath मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

अगला गाना तुसी सुनोगे पंजाब दे तड़कीले ते भड़कीले नौजवान गबरू घातक दी आवाज च। इस गाने की फरमाइश की है लुधियाने तो सुखविंदर सिंह, होशियारपुर तो बेबी बेदी ते अजरौर तो मिंटू जी ने। पेश है बंब गाना।

स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। एक मेरी एडवाइस ले लो, सब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, बेस्ट कर रहे हो यार, कोई बात नहीं। अगर आज का दिन ऐसा था कि जहां पर आपको लग रहा था कि डाउनर है यार, नहीं सही नहीं हुआ आज, नहीं तो कल सही हो जाएगा यार, ऐसी का बात होगी। रियलिटी चेक का भी टाइम नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में, वो तो मैं ऐसे ऐसे काम करती रहती हूँ, समझ रहे हो मैं कितनी समझदार लड़की हूँ यार। PMO, अगर मैं आपको बोले ऐसे लगता है क्योंकि गवर्नमेंट वाला जो वर्ड जो है वो मैंने बोल दिया। PMO में अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो Gen Z slang है, इसको यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है piss me off, right? कोई सिचुएशन, कोई इंसान अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा पिस ऑफ कर रहा है तो उसके लिए आप जो है वो PMO का वर्ड जो है वो यूज कर सकते, लाइक दैट गाय आई ड्राइव थ्रू कम्प्लीटली PMO, ठीक है। सो या नेक्स्ट टाइम इट्स कूल, आप यूज कर सकते हो। 7:06 स्टूडियो की घड़ी पे सेंटी वाला गाना आपके

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: शुरू से एक आदत है कि मैं नाम भूल जाती हूँ। मेरे को कोई भी नाम बताएगा मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी मैं मतलब ऐसा होता है कि सामने वाले ने मुझे अभी नाम बताया, मैं वापस से पूछूंगी, तो ये मेरी शुरू से दिक्कत है, मैं नाम भूल जाती हूँ। हर इंसान की एक अपनी अपनी जो है वो होती है लाइफ में, है ना। भूलने की बात से याद है, कुछ लोग जो है बातें भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भूलना जो है ना वो सबसे बढ़िया वाली ब्लेसिंग है। पता, दिक्कत उन लोगों को आती है जो सब कुछ याद रखते हैं। एग्जैक्टली। सो लाइफ में अगर आप चीजें भूल रहे हो ना तो सही है यार, खुश रहो, चीजें याद रहेंगी, क्लेश होंगे। सो ये था आज का
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: ऑलराइट। अच्छा क्या, मैं भूल गई। अच्छा है ना भूलना। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एप्लीकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस

0: प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

रॉकी करवा देना अपने मैगजीन सुनियो के तद की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। क्या कभी आपने अकेले रूम में म्यूजिक लगा के अकेले डांस करके देखा है? भाई उसका भी अलग लेवल का मजा होता है। आई डू समटाइम्स, बड़ा मजा होता है यार कि आप अपना फेवरेट वाला म्यूजिक जो है वो लगाओ, ऊंचा सा कोई भी गाना, और उस पर नाचो यार, जिस चिल, कोई आपको देख नहीं रहा, आप अपने तरीके से वाइब करो, ये भी अलग लेवल होता है एंजॉय करने का। जिनको डांस के पूरे स्टेप्स नहीं आते हैं, दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं बाहर डांस कर रही होती हूँ, अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मेरे अपने स्टेप्स होते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने लेवल पे, जब अपने रूम में जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा, बस आपका म्यूजिक है और आप है, जब आप वाइब करेंगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा वीकेंड पे, ठीक है। 7:34:30 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। डांस करते हो वो वाले स्टेप्स आप जरूर करके देखिएगा शीशे के सामने, जो कि आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही कर सकते हैं, हंसी अलग से निकल जाएगी आपकी, पर कोई देख थोड़ी रहा है।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर।
1: एकदम वीकेंड की वाइब वाला गाना सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी देर में नेम गेम खेलने वाली हूँ। अपना नाम टाइप करके रख लो दोस्त। आहा, सुखबीर

कुड़िया नहीं कर लिया और सिमरन कौर लेने वाली है आप सबके नाम क्योंकि हम खेलने वाले हैं बेबी आपको लाइफ में कोई बेबी बुलाए ना बुलाए मैं तो बुला लेती हूँ चलो कोई बात नहीं आपको खुशी तो मिल जाती होगी यार चलो कोई तो है जो बेबी बोलता है चलो अभी जितने भी बेबी बाबू हैं जो भी हैं अपना जो मुझे सुन रहे हैं अपना नाम लिखिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 3311063 पर इस नंबर पर अभी के अभी मुझे जितने भी नाम दिखेंगे वो अभी के अभी मैं आपका रेडियो पर नाम बोलने वाली हूँ 3311063 पर सफी उल्ला जी सुरित जी तजिंदर जी हकीम अंसारी जी शिव जी फिलिप जी किसी ने हेलो सिमरन लिखा नहीं सिर्फ नाम लिखो दोस्तों अपनों जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच सतवंत जी थैंक यू सो मच मोहम्मद वसीफ जी थैंक यू सो मच महाद जी थैंक यू सो महबूब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सुरित मैं ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ फारा चांद जी थैंक यू सो मच सौजन्या जी थैंक यू सो मच फातिमा यूसुफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए जिन जिन लोगों के नाम ले रही हूँ वो वापस से नाम ना लिखो यार बेचारे दूसरे रह जाते हैं यार दानिश जी थैंक यू सो मच जैम जी थैंक यू सो मच पाली जी थैंक यू सो मच जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच दानिश जी थैंक यू सो मच खिजर हयात खान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए रेहान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए दानिश मैं ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ महबूब आलम जी थैंक यू सो मच तीरथ प्रसाद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए वीडियो मत भेजिए मैं कैसे वीडियो देखूंगी दोस्त बोलते बोलते महरूस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए हाशिम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए हाजरा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए 3311063 पर दोस्त सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिखो करीम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए मोहम्मद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए क्विकली अगला गाना शुरू होने वाला फिर मत कहिए मेरा नाम लेते सिमरन जी आप तो इम्तियाज जी विजय जी थैंक यू सो मच इकबाल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सफदर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए एंड दैट्स इट फॉर नाउ जिन जिन लोगों के नाम ले लिए बेटा अब आप थैंक यू बोल दो बंदे बन के और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दो ठीक है फिर दैट्स इट अगर ना आपका नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं दोबारा फिर से कल कल नहीं कल तो छुट्टी है मेरी ठीक है सैटरडे को फिर से नेम गेम खेल लेंगे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
4: हे, दिस इज लियाना डी क्रूज।
5: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
6: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
7: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: Zabardast evening, make your drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

0: सच्ची आ
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर 1 आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: आपको देना चाहूंगी कि रेडियो ऑलिव पे आप सुनते हैं, इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं, कॉल्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया को भी आप उतना ही प्यार दिया करें, जरूरी है यार। सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम रन करते हैं, तो अगर आपका चांस रेडियो पे नहीं लगा तो सोशल मीडिया पे जरूर लग जाएगा। एंड उसके साथ साथ रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन को अपने फोन में अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, कोई भी शो नहीं मिस करेंगे, कोई म्यूजिक नहीं मिस करेंगे। रात आधी रात को भी आपका मन होगा ना कुछ म्यूजिक सुनने का, सो आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा म्यूजिक जो है वो 24/7 ऑन रहता है। कैसी चीज है, कुछ भी फील कर रहे हो ना आप, वैसे ही म्यूजिक जो है वो आपको मिल जाता है। सो उसके साथ साथ एक चीज आप और भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई मैसेज आता है, क्योंकि बहुत सारे फेक पेजेस रेडियो ऑलिव के बन गए, तो आपको भेज देते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो, अपनी इन्फॉर्मेशन दो कार्ड की, हम नहीं मांगते आपसे आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
1: ओ सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू,
0: ते मैं तेनू लब्बदी मस थोड़ी देर दे विच, टिल देन।

हां जी मैं कह जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल एक नंबर गाने तुहानू सुना दिते इन्नी सारिया गल्लां कर लिया दिल लगा दिता तुहाडा है ना। चलो फिर हुण सिमरन कौर दे इत्थों कल्टीवेशन दा टाइम आ गया। जदों मैं पंजाबी बोलनी चालू करदी हां फिर मैं चुप ही नहीं करदी। आवन हिंदी पे मुझे आना है, ये मुझे याद रखना चाहिए ना। ज्यादा सारे लोग जो है वो नहीं समझ पाते, लेकिन पंजाबी और हिंदी वैसे सेम सेम होती है। कुछ कुछ वर्ड जो ऐसे कड़क होते हैं, थोड़े से ठेठ होते हैं, जो नहीं समझ लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का पूरा ध्यान रखती हूँ। अभी चार घंटे आप लोगों का ध्यान रख लिया, अब ये ध्यान जो है वो सीधा मैं सैटरडे को रखने वाली हूँ आप लोगों का। कल फ्राइडे अपनी छुट्टी है यार, ऐश करेंगे। मतलब दोपहरी में ठंडा ठंडा तरबूज खाने वाली हूँ। मेरा बड़ा मन है यार वाटरमेलन के ऊपर नमक लगा के आफ्टरनून में खाना। यार बचपन में खाते थे, लेकिन वो कटवा के लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे काटना नहीं आता है। सो या नहीं आता है मुझे लाइफ में। ओके चलो फिर खत्म इधर वैश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

613 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।